0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में क्या दक काफुंग अता
2: मुन्ना थी है बरको वेंडा हिंका में ने अफन तिकन कोलन
1: तिकु दुं हावदा है रंगल है तिहें मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांकां को देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे